0: जोसोलपा थौ नेपाल सम्बत छिन्छसौ पी खुद अनलाथो पञ्चमी थो रेडियो नेपाल ख आन्यना दिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था या मु मान्यता वा आदर्श कथ ज्या या गुल्लोपी सरकार क्रियाशील जुई माग उधया दिगुदु सुनसरिया कोशी गाउँपालिका मेगा सिटी हल उले ज्याना दिसे वेकल जनता या त मधे क मगागु जनता य कथ या विकास या नीति थत्थे ज्या या मागुली बब्यादिगुदु। राष्ट्रपति पौडेल शान्ति विकास हो सुशासन संविधान हो शासन प्रणाली तगु आजु पुवाङकेगु कथ मु ल च्याके मागु ध्यादिल। राष्ट्रपति पौडेल स्थानीय तह जनता या फुक शिवे लिकया सरकार जुगुली जनता आशा या कथ सेवा प्रवाह या मागु सुविधा लल्या मागु व विकास या ज्यान्याके मागु कनादिल। राष्ट्रपति पौडेल सप्तकोशी खुसिया सिथे दुगु कोशी गाउँपालिका या ऐतिहासिक नापा धार्मिक दृष्टिकोण महतन जागु थया दिल उगु लाग्या महतन जागु धार्मिक लागा त बराहा क्षेत्र धाम रामधुनी पिण्डेश्वर दन्तकाली व बुढा सुब्बा ज्यगत दु। प्रतिनिधि सभा या बैठक मेगा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 मतदाता ना धल नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 निह बगुदु। बैठक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र सहाय थासङ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतम प्रतिनिधि सभा दुज निर्वाचन नापाङ्गु संशोधन विधेयक व मतदाता ना धल नापाङ्गु संशोधन विधेयक निह भया दिगु ख थया निह प्रतिनिधि सभा या आकाङ्क्षा खाँ सुन्ने व विशेष इले सांसद पिंस लोङ न्यास बिहा दिशा सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा प्रेस स्वतन्त्रता याता कया सरकार पूर्ण कथ प्रतिबद्ध जुयागु ध्या दिल। मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा संविधान ल लागो प्रेस स्वतन्त्रता या अधिकार पूर्ण कथ सुरक्षित जुगु अथो अधिकार सुनन हनन या मफैगु ध्या दिल। वैकल सांसद तेसन लोङ न्यासिसा व सुझयाता मन्त्रालय आपालङ गुहाली कथ कया सुझया लिधसा मन्त्रालय ज्यात लिचो लाकिगु या नानी हज्यागु बचना पाबिया दिल। वैक्लम प्रेस काउन्सिल या क्षमता अभिवृद्धि याना प्रभावकारी सेनलाका नेपाल या मिडिया लगायत स्वच्छ जवाबदेही गौरव या फैगु कथ थो लागा या त विकास यागु सरकार या कुत जुयासँग थया दिल। मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा नेपाया दुर्गम हो आपला व्यावसायिक कारोबार जुइगु लागातक टेलिफोन व इन्टरनेट सेवा या गुणस्तरीय पहुँच उपभोक्ता बजेट व ज्याजो नापा व्यवस्थापन आयोगको विशेष सरकार या नापाङ्गु ज्याज जुइगु न ध्या दिल। अथियाना सांसद तेसन लोङ्गु विशेषण लिसबिया दिसे युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव स्वदेशी प्राप्त रोजगारी बोलङका ल्यामत यता दे दुनहे लजका व भाता ल ल्यागु विशेष मन्त्रालय या नापाङ्गु ज्या जुइगु ध्यादिगु दुसा वैक्ल वैदेशिक लजगा या नामे जुइगु शोषण ठगी व अनियमितता याताकया सरकार या शून्य सहनशीलता या नीति कघाइगु थुवाथुक्या दिल। श्रम मन्त्री यादवमा वैगु दिने ठगी नियन्त्रण व आपरवासन या त पारदर्शी न्यायचित दिएके त वैदेशिक लजगा या मुख प्रणाली या त पूर्ण कथन डिजिटलाइज यागु नीति जुगु न सदने जानकारी ब्यादिगु दुसा सभामुख डोलप्रसाद आर्याल सभा या मर्यादा लेङ्का तेत सांसद त इनाफ नयाना दिगु ख श्रम संस्कृति पार्टी या सांसद पिसा प्लेट कार्ड नापा विरोधी या थुङ्कानी सभामुख आर्याल विरोधी या शैली असंसदीय जुगु धासे व्यवहार भिङ्केता ख्यासो बिया दिगु ख। बैठकै सभामुख अर्याल नापा यी फोनाश्रम संस्कृति पार्टी या नायक हर्कराज राय प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री पनि संसद या त जिम्मेवार देखे मागु थपिसन हुनाको विषय लिसा बि मागु कनादिगु ख वैक्लन्दे या सिमाना सहकार्य डेवाली त सुकुम्बासी व्यवस्थापन नापा विशेष सकल जनता लोनासोङको विशेष थपिसन प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री तेता नेस नेता सोयागु व लकस देका बित इनाप यानागु ध्या दिल। अथियाना बैठक सांसद पिस शिक्षा स्वास्थ्य सकल मनुतेगु पहुँच तब्या के मागु सुकुम्बासी छे मधुपिनीगु हात्या याक्न नङ्के मागु नापाया विशेषण सरकारी ध्यान कोसला दिल। प्रतिनिधि सभा या मेगु बैठक थौ सुथसिया झिन्छता इलेगे चोनिगु गोसादु। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नेपायता सम्पत्ति शुद्धिकरण नापाया ग्रे लिस्ट पिने पिकायता सरकार फुक्क फुगु लपु छेलासोनाको ध्या दिगुदु। प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषदीय कार्यालय या समन्वय स अर्थ मन्त्रालय मिग गोसा गोगु एसिया पेसिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ एपिजी कथया कार्ययोजना नापाया सहला संवेकला नेपायता ग्रेल लिस पिने फिकेता सरकार ज्या नाचुनागु धेया दिगु खस उगु समीक्षा निकाय प्रतिनिधि नापाया सहला अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले फुक्क सामर्थ्य छेला नेपायता ग्रेल लिस मुक्त यागु बचन बिया दिला प्रधानमन्त्री नेतृत्व सरकार सुशासन पलिस्ता यासे विकास यता निहज्या कित कुत याना चङ्गु नेथना दिसे वैक्ल जनमत्य मु आशा सुशासन हे जुगु बिचा पोङ्का दिला नुगु सरकार निशोने धुङ्कानी सुशासन लाग्या जुगु ज्या प्रत्यक्ष अनुभूति जनता त्यसै या खनि गुण वैक्ल थगु बिचा पोङ्का दिगु ख राष्ट्रिय सभा कथया विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठक सांसद पिंस गुणस्तनहीन नशा जोल छेला बुलास स्वास्थ्य जुगु लिचो हो याएता खाद्य गुणस्तर परीक्षण उपके मागु धया दिगुदु समिति मिगचङ्गु बैठक आर्थिक दल 2083-84 बजेट तर्जुमा विशेषण थिति मन्त्रालय सचिव पी नापाङ यागु सहलस सांसद पिस आयत यता निरुसायत यासे किसान यता बालागु अनुदान या व्यवस्था मिले या मागु व कृषि तथा खाद्य लगाय आत्मनिर्भरता उपके मागु धया दिल बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव कृष्ण बहादुर राउत हरित अर्थतन्त्र डिजिटल व्यापार व ई कमर्स प्रबन्धन उत्पादनशीलता उद्योग विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध जुगु धया दिगुदु छ अथियाना कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा व बैठक भूतिकासे युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सचिव डाक्टर दीपक काफ्ले विसन थथगुनुगुङ्गा दिगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय कक्षा 11 या आख बनेगु बङ्किएगु वैगु असार 1 गते निसे याता याकेता उजौँ बिगुदु मन्त्रालय शैक्षिक सत्र 2083 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई या लिचो पिथने धुङ्कगु विशेषण कक्षा 11 या आख बनेगु बङ्किएगु न्याकेगु नीति वैगु असार 1 गते याता याकेता उजौँ बिगु ख मन्त्रालय कथया शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा विकास व समन्वय इकाइ तेता मिग पौछ या थोक खया जानकारी बिगु ख सरकार सेना चङ्गु सहकार्य मेगु सोस व पेम सित ची धङ्गु बचतकर्ता या कथन ढेवाली त लागुदु सेना चङ्गु सहकारी व्यवस्थापन समिति मेघ कृषि सहकारी हो शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी या साना बचतकर्ता तेगु बचत लित बिगुख समिति कथम इग कृषि सहकारी या चेच्यामा शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी या निश व झिङखुमा बचतकर्ता ढिवा लित बिगुख सा थ्यान्य समिति कान्तिपुर सहकारी निश व झिङ्गामा शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी या सचिव ने खुमा व पशुपति सहकारी या नेमा याना मुक सस व नेच्यामा साना बचतकर्ता तेगु धेवाली त बिगुख समिति कथा सेना चङ्गु सहकार्य अथे ने खुदो बचतकर्ता या अथे पी खुगु अर्ब बचत लित बि मालिगु जुगुदु सरकार न्याका चङ्गु राष्ट्रिय पोषण लेखा जोखा अभियान या झुले कुपोषण झुपी मचा तेगु ल्या उपो खने दुगु थागुदु स्वास्थ्य सेवा विभाग पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा अभियान या नापाङ्गु प्रतिवेदन वङ्गु दे सिवे थुगु सि कुपोषण जुपे मचामस्त उपलब्ध ख वैकया कथ तसक जोनी गु कुपोषणे पेङ्गु प्रतिशत मचामस्ते त खने दुगु थो ल्वे थोया न्ह उगु ल्याखे छगु प्रतिशत जक्क दया चङ्गु ख मध्य प्रदेश अतिथि जिल्ला अतिक्रमित पेसा व पी निगु हेक्टर गु लागा अतिक्रमण मुक्त यागुदु मध्य प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुर या कथ दे द निसे अतिक्रमित गु लागा खाली यायता व याकेता स्वपुदुगु वन कार्यालय सूचना पिथने धुङ्कानी प्रदेश या च्यागुतल जिल्लासा पेसा व पी निगु हेक्टर गु लागा अतिक्रमित मुक्त जुगु ख निर्देशनालय या कथ निर्देशक जगन्नाथ प्रसाद जयसवाल प्रदेश या थिति जिल्लासा आन चिङखुगु दो न्यास गुई गुगु हेक्टर गुण लगाया भूमि अतिक्रमणी लागु अतिक्रमित गुण लगाया भूमि खाली यागु ज्यानासँग धया दिल कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी दुग्ध विकास संस्थान डिडिसी भिङ्केको नीति गुगु धलय निर्देशिका पिथना दिगुदु मिग पिथना दिगु निर्देशिका वङ्गु या द दुने दुरुमुङ्केगु मिगु व इनेगु या लक्षिया तथ्याङ्क आमदामी या धल झिङ्ग्यानु दुने मन्त्रालय दूत बित लापतिक लक्ष्य धल मेगुलाया हेनु दुने मन्त्रालय छोया हेता धया तगुदु संस्थान असुल उपरिया मागु बक्यौता देवा प्रचलित कानुन कथा असुल उपरियाना लक्ष्य दुने मन्त्रालय यता जानकारी बित उज ब्युसे दुरु मुङ्केगु निसे दुरुया जोल मिगु इनेगु बिलिङ प्रणाली लेखा प्रणाली सम्पत्ति ओ जिन्सी अवस्था नापाया संस्थानसँग प्रभावजुगु फुक प्रक्रिया त नेपाल सरकार स्वीकृति ललहागु शासकीय सुधार्या स्वच्छी धल दुने ज्या धल कथ सोला दुने विद्युतीय अभिलेखा दुथ्या केत उज बिया त गुख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाला अस्ट्रेलियाले दुपी नेपामी समुदायसँग नेपाल अस्ट्रेलिया सफियातन हु गुथासे थ्याङ्की गु महतन जागु भाला मितगु थयादिगुदु मिग ये गोसा गोगु नेपाली डायस्पोरा इन अस्ट्रेलिया प्रतिवेदन सार्वजनिक यागु झोले मन्त्री खनाला गैर आवासीय नेपाली नागरिकता या व्यवस्था यता अझ लिचोलाइको कथा देखेको विशेष सरकार दुने सहल जुया सोङ्गु जानकारी बिया दिलछ वैक्ल नेपाल संविधाने दोहोरो नागरिकता व्यवस्था मधुगुने उगु कानुनी हाठ्या डुगु नेथनादेश विद्यमान कानुनी संरचना दुने चुना डायस्पोरा नापाया स्वापु अझ सेनलाके गुकुत जुया सोङ्गु खना दिल नेपाल नीति अस्ट्रेलियाली राज सिमन अर्नेस्ट नेपाली डायस्पोरा प्रिपरेसन सोजक मजुसे नेपाया त हली नापा स्वाइगु महत्व जागु सञ्जाल जुगु थया दिल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय नेपालले हान्टा भाइरस संक्रमणीय जोखिम हो जुगु थागु दु मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हान्टा भाइरस समूह एन्डिस भाइरस संक्रमित यैम छु नेपाली मधुगुले नेपाली हान्टा भाइरस जोखिम हो जुगु दुगु व नेपाली हान्टा भाइरस संक्रमण अझन पुष्टि मजुगु धया दिल आदेश पिनेया बुख इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन कूटनीतिक कथन नङ्केगु नीति हात्या नङ्केगु नीति फुक ल चागु धया दिगुदु अत्यजुसाना वैक्लान दबाफ बल छेला बुला पाके मजुसे इरानिया त आत्मसमर्पण याकेता सोगु खस वो भ्रमजक जुइगु धका ख्यासो नापा बिया दिगुदु इरानिया नुगु पर्सियन गल्फ स्टेट अथोरिटी हर्मुज जल लफी निगरानी लागा परिस्ता यागु घोषणा या से वैगु वनिगु नीति अनुमति अनिवार्य जुइगु धागु दु अनुमति मध्येक वैगु वनिगु या त गैर कानुनी कथा कागु ख्याचो न बिगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम त्यसन थागु दु चिनिया राष्ट्रपति सी चिङफिङ नापा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बेजिङ नाप्लाना दिसे चीन रुस सफियता सेलाकिगु रणनीतिक कथा बल्लाकिगु धया दिगु दु विश्व राजनीतिक आपल ध्रुवीकरण जुयासँग इले निमा नेता दथि थथ गुसा जे दारिया त अझ दुगेङ्क दुहा वाने गु चिना पाकेङ्गु दु मौसम जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश हिमालय पहाडी लागाया मो थासे मधेस प्रदेश व लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश हिमालय पहाडी लागा नापा बागमती गण्डकी प्रदेश तराई लागाया छगुनीगु थासे पतिचा तसक वा वैगु व चपुकुहा वैगु सम्भावना कुबिगु दुसा सुदूर पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश पहाडी व तराई लागा क्वाइगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग यातापुदु वङ्गु निपे घौले ये सोनिगले रेकट यागु क्वाज निच्यागु फुटी पेङ्गु डिग्री सेल्सियस दु थाउन हिने ये सोनिगया क्वाज निपेङ्गु निसे निखुगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले सुथे सिया ज्ञाता इजुया खुगु मिनेटे खने दुगु निभा सनिल खुता इज जुया निएकुगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार कोचाल चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस शुभ
1: आवाजले छुने सम्पूर्ण नेपाल रेडियो नेपाल नेपाली माटोको आवाज रेडियो नेपाल।

0: साह्रै मिठो गीत, साह्रै मिठो गीत, साइकल सरार। तिम्रो चोखो सिउँदोमा
1: सिउँदो सिन्दुर फरार
0: भने चाहिँ यो 40 सालतिर गाउनुभयो,
1: यो 40 सालमा
0: है जवानी।
1: अहिले अब दुईजनाले छोप्थ्यौँ सुरे।

अलेन लक्षेस खुल्ला जुक्टुनकी शिला यर्गे जोइ यम्बुल्ला टेक हब जब छर्सी जोन वाय प्रतिनिधि सभा छकदुला ग्याङसिङ देजिन दलेन लोनपुर डाक्टर विक्रम तिमिलसिनाकी सुङ दलेन लक्ष्य डिजिटल सेवा क्लाउड सेवा साइबर सुङच्योप तेजिन एआई यर्गेलाई खक्षण पुच्यु सुङसुङ लोनपुर डाक्टर तिमिलसिनाकी प्रेस काउन्सिलला रम्बु जो प्रेस काउन्सिलकी क्षमता यर्गे जोपला तङ एमबी मिडिया सखुल्ला ट्याङबु तङ इसे केथोपु जोपला सुङकी खेलेनोतुप सुङवाय टिम जब लाकाला मिमाङतुई सक्सुक कितुब ककप जबला डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक क्यान वाय गलुप बैसाख लाकी गतेङिसु दिनकी सेरमु टिम तुसेनकी कपला खेपेल क्याउती प्लेटफर्म तेमा मिमाङतुई ऐन तङ मस्याउदा कि कोरला टोङ्गु तेर्थपु सेन वाय टिम डिक्टिम तेजिन सिथु कोर्की लोनपो सोभिता गौतम कि टिम जब लाकाला मिमाङतुई सक्सुक लाग्पा

0: kekan chitang wae idi ta logistics ki jeren jusum
1: nasi
0: ta sang bone jundi jan ya bai pesa tu pare gal wae
1: nasi
0: tama kura jane tanda nireki chit jitaran nagar palika gunsa dia ho dungala so men chit wae ta kundi nani ne jun ta se ye lo chit ga ta ta insan kona ra jusa jane nireki du ga shu ta shu yi kona
1: nasi
0: tama kongi ta ne niram kona jusi ne tu ge ne ka se ba शेषे नांसु निरेगे तुरा जने तदा दे पाटले माध्यमिक वेदला बोलुंग गाव पालिके को नंबर 7 लंग 7 पाटले को कडुंग लाला जगन चिक तलिने जुन तोंग सा तुया वाय तंबा
1: नसी
0: के तुरा जने तदा निरेगे चोती तती लोकताला जगन जगन नमुदा तिवला का मादी कान जंगा मल नसु जी तफो सानांगी नांगला इसिना दे पेटी की गोदा तिवा की कांगल चिक तमा नु तदा दबी युलारा तोंगुला लंग शेरवी शर्वाईरं गोसुं मिदे यांबा तंदि माचुं तिके सेनसिति ता शर्वाईरं लोपेन छोलो इसुं सिसि निरंग लंग कलेरं नो
1: नोति
0: शर्वाईरं इस देपो युला मातं सु सि सला पो युजि छोका तं तिवा दाबिजि केरि तं तिवा तुवा जने शर्वि केरि सिबा तिवा छेन गोसुं तमा तुरा जने चोवति तंदा निरेकि पिता मुमुला सेदा टिक तं तिवा लरा इस गोम तसां सेरकिम रे तंगो तुरा जने त्याकि युलवा तलरा इचिना निगावा गुवा त्याकि chak chopa kitu pala kuran yana thana nala chadanda ti washi unne sine ki chadanda ti wa ka na no
1: nasi
0: ji torunga ti no pen sunpia sen ta no pen sunpia no ni toy dino kya sen ta ta ji hong na be ji ni rang yelo te ji ka ring ji te ja ji ni ra ji chang de banda ga sun ne hong na be ga ga na no kuran yana ti no pen ji te yu la ju mo do pala ta ta ta ti wala ka pala chu de chu ba ne ju shi ba so ya lam te ro chun ti ta mu mu la त्याची गाव गोमला लाम सिरशन तुरा जने ती युला वद की गोमला मन तम ती व कोन कोन नो ती व तम ती व लंग शि चो या कुन नंग नो तुरा जने ती ते यु दि मन दंग कन दंग ती वला तु गने छ कासे बा ती शि चो या कुन नंग नो ला तु की तले ती दा पे तु गने लोप ता तम ती वला दा ते जे जकन तंग नंग सो सु खोन दा बे की चकलेन लामे पे ता ती कला लाम ते रु मु मुला रंग तु गने ता दा युला वद की नंग बे के गुंबा
1: ブレンバンにとにちょっとだって言われて、私そんなもんかこれやね、てじが見顔ごたんって言われて、初心なんごでこんなバランスをたんって言われて、これでその、とらじゃねえかって、あ、かせばさんあらいちゃくちゃばつけんって、こんなごもいて、やんちゃかつけんぶじ、たぶちゃくちゃばだ、ちゃくちゃんそうちゃんつけんぶじ、てこら、なりなりなんじゃされんし、ててやじゃらんじゃな、なし。なし。てきるぞされんすんだっぴ、シェリキ、リシュンてやけどプラ、ファフィログラムのもしょにらせ。
0: ये तो ये दापी ठीक है ठीक तो लाती दापी मी शेरवा इन दो चोई की तेरी सिस्टम से कौन सी मोहम्मद लाती दापी तेजी के चो रिक्शों के रिक्ता तो दापी शरीर ये तो लाती सुन क्यों पी की तो किधर मिसी दापी लोकतला रंग दापी के लाम तेर मातृ सुन सी दापी खांग बदरा लाभ तुरंत जाने लोकतला ती दापी न्यापाली इन्हीं के जाने लाभ सुन सी तेर तादा तीता मोहम्मद लाता संभाला इन सुन सी दापी के शरीर की पैदा मंग चवा चिकला वो तो तंग तुरंत जाने दे यंबुला वो तो तंग त्यों आदि बड़ी स्कूला तंग चो बड़ी स्कूला दापी शरीर की रिक्ता त्यों आदि तो चं दापी की ता युला रंग शरीर के रिक्त सुन क्यों Dinang lati tok tok.

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झा से सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैठक शुरू भेल अछि। आई भिनसर 11 बजे से शुरू भेल, किछ समय स्थगित भेलाक बाद बैठक फिर से शुरू भेल अछि। सभामुख टोल प्रसाद आर्याल बेर बेर सांसद के बैसल लेल अनुरोध कलाक बाद ओ सब नहीं बैसलाक बाद आई 15 मिनट के लिए बैठक स्थगित कयल गेल छल। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार विमर्श तथा पारित करबाक कार्यसूची तय भेल अछि। संघीय संसद सचिवालय सार्वजनिक कयने कार्यसूची हिसाबे बैठक में निर्वाचन विधि विज्ञान आ विकास वित्त संग संबंधित विधेयक सब प्रस्तुत कयल। बैठक में प्रधानमंत्री

विधेयक ऊपर विचार विमर्श कायल जाके के प्रस्ताव प्रस्तुत करता। विधेयक ऊपर प्राप्त संशोधन सबके निर्णयार्थ प्रस्तुत क चुकलाक बाद अर्थमंत्री वागले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 पारित कायल जाके के प्रस्ताव बैठक में पेश हैत। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में सांसद सब समसामयिक विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। बैठक के शून्य समय में सांसद सब समसामयिक विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद दलिता कुमारी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मिर्चैया खंड में नाला निर्माण कायल गेल स्थान में मच्छर बढ़ल आ वह कारण से स्थानीय के स्वास्थ्य में जोखिम भ सकबाक भेला से ढक्कन विहीन नाला नहीं छोड़ सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। नाला के निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न करा आवागमन आ दैनिक सहज बनाब लेल ओ मांग कलनि। सांसद लक्ष्मी प्रसाद पोखरिल दलेख जिला में निर्माण भ रहा ट्रामा सेंटर के काज शीघ्र समाप्त करवाक लेल मांग कलन। दुल्लू अस्पताल में सरकारी अस्पताल बनाब जनता मांग कर रहा से मांग के सुनवाई भ कानमैन हेबाक चाही पर जोर दिलन। सांसद लाल विक्रम थापा सुनसरी स्थित बूढ़ी खोला के कटान नियंत्रण के लेल बजट विनियोजन करवाक मांग कलन। पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखा के भवन निर्माणक लेल बजट विनियोजन करवाक ओ सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। सांसद लीमा अधिकारी आचार्य कृषि प्रधान देश में किसान के नोर से माइट भीज रहल बतबैत पशुपालक किसान के दूध के भुगतानी शीघ्र करवाक चाही पर जोर दिलन। सांसद लेख जंग थापा उद्योग बने त देश आगा बढ़त अई भावना से काज करवाक लेल सरकार भेल सब सबके आग्रह कलन। बाँचक अधिकार छीन कर लाल गिल विकास नहीं चाही हुनकर कहब छलन। सांसद विक्रम खनाल पश्चिम नवलपरासी के छोट भंसार बंद भेला से समस्या भेल बतबे शीघ्र यथाशीघ्र संचालन में आन लेल मांग कलन। कुशियार किसान के समस्या कहियो समाधान नहीं भेला से तत्काल समाधान करवाक लेल ओ सरकार भेल निकाय के ध्यानाकर्षण करौलन। सांसद विक्रम थापा कपिलवस्तु जिला कृषि में निर्भर भेला से सिंचाई के प्रभावकारी व्यवस्था करवाक मांग कलन। सांसद विपिन कुमार आचार्य श्रमिक के कईटा पीड़ा पारिश्रमिक नहीं भेटला से महीना के अंत में अनिवार्य भुगतानी के व्यवस्था मिला देवा लेल मांग कलन। अहिना सांसद विष्णु बहादुर खड़का कृषक के सरकारी अनुदान तथा कृषि औजार उपलब्ध करा देवा लेल मांग कलन। सांसद विष्णु मायाविक तिराथुन में अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त भेला से समस्या समाधान करवाक चाही पर जोर दिलन। वह कारण से बसाई करब वाला क्रम नहीं रोकल गेल बतबैत ओ तमोर लिफ्टिंग आयोजना शीघ्र सम्पन्न कराक समस्या समाधान करवाक चाही पर जोर दिलन। सांसद शंभू प्रसाद ढकाल मेन पावर से फ्री टिकट फ्री वीजा कहल गेल बावजूदो समस्या समाधान नहीं भेल कारण अ दिस ध्यान देल जेबाक चाही बतौलन। सांसद शहनाज खातून रोहथट के अस्पताल में उपचार नहीं भेटलाक बाद व्यक्ति दूर दूर इलाज के लिए जाय के अवस्था रहला से तत्काल चिकित्सक के व्यवस्था क देबाक लेल मांग कलन। सांसद शिवशंकर यादव कृषक पेशा प्रति निराश भेल बतौबित समय में खाद बीया आ सिंचाई के व्यवस्था करवाक चाही पर जोर दिलन। सांसद श्रद्धा कुंवर क्षेत्रीय सिद्ध बाबा क्षेत्र के सड़क जोखिमपूर्ण भेला से समस्या समाधान करवाक लेल मांग कलन। इबोला वायरस नेपाल में सेहो बढ़ सकबाक भेला से तैयारी की सब अच्छे प्रश्न सेहो कलन। सांसद श्रीधर पोखरिल सीमाना के रक्षा में रहल हाथ में लाल पुर्जा नहीं भेल कहत विशेष कार्यक्रम लागू करवाक लेल मांग कलन। सांसद श्री राम न्योपाने विदेश में निधन भेल के सब आना में समस्या भेला से सहजीकरण करवाक लेल श्रम मंत्रालय के ध्यानाकर्षण करौलन। ओ अनहर बिहार से बाली नष्ट भेल अहिना कमजोर पोल आ तार से व्यक्ति जोखिम में पड़ रहल अ समस्या के समाधान करवाक लेल मांग कलन। सांसद संतोष राजवंशी मोरंग निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 में रहल हुलाकी राजमार्ग यथाशीघ्र निर्माण करवाक लेल मांग कलन। अ क्षेत्र के हुलाकी राजमार्ग में दैनिक 5-6 दुर्घटना होत आयल कारणे तत्काल गुणस्तरीय निर्माण क समस्या समाधान करवाक धारणा रखलन। सांसद संतोष सुब्बा देश में बसाईसराय अधिक बड़का समस्या बनल बतबैत बसाईसराय रोक आधारभूत विषय शिक्षा क्षेत्र में प्रभावकारी कदम उठेबाक चाही बतौलन। म्यांगलुंग कैंपस में 700 विद्यार्थी भेल बावजूदो विश्वविद्यालय के आगे कैंपस होब नहीं सकल ओ बतौलन। सरकार खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत नियमन आयोग के खाली पदाधिकारी नियुक्ति के लिए आह्वान कलक। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय सूचना प्रकाशित कर आयोग के एक अध्यक्ष 4 सदस्य पद के लिए योग्य तथा इच्छुक व्यक्ति से आवेदन मांग कने 4 सदस्य मजे एक पद महिला के लिए सुनिश्चित कल गल मंत्रालय जनौलक। विद्युत नियमन आयोग 2074 के दफा 5 के हिसाब नियुक्ति प्रक्रिया आगू बढ़ाल गल मंत्रालय उल्लेख कने। इच्छुक उम्मीदवार अन में तोकल गल न्यूनतम शैक्षिक
योग्यता तथा अनुभव पूरा कयने हेबाक चाही। आवेदन देबा लेल इच्छुक

व्यक्ति सूचना प्रकाशित भेल समय सँ 15 दिन भीतर मंत्रालय अंतर्गत रहल विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय शाखा महाशाखा में निवेदन बुझाव पड़त। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल खेलकूद क्षेत्र के विकास आ खिलाड़ी के सम्मानक लेल राज्य के अखनो बहुतो काज करबाक बाकी रहल बतौलनि। एहि मंत्रालय में नेपाली महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के जीत के शुभकामना सहित विदाई दैत ओ ई बात बतौलनि। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में सहभागी होबय जाय वाला टोली के लेल आयोजित विदाई कार्यक्रम में मंत्री पोखरियाल खिलाड़ी के मनोबल उच्च बनाबय सरकार काज कऽ रहल बतौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले आवला आर्थिक वर्ष के बजट निर्माण के संदर्भ में पूर्व अर्थमंत्री संग सुझाव लेने बुध दिन काठमांडू में आयोजित विशेष एक समारोह कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले 9 गोटे पूर्व अर्थमंत्री सब संग नया बजट के प्राथमिकता चुनौती के संबंध में रहकर केन्द्रित भाकर सुझाव लेने। अर्थमंत्री वागले पूर्व अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल, शंकर कोईराला, डॉक्टर युवराज खतिवाड़ा, डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी, सुरेन्द्र पांडे, डॉक्टर प्रकाश शरण महत, बर्खमान पुन, विष्णु प्रसाद पौडेल आ जनार्दन शर्मा संग सुझाव लेने। अर्थविद सबके अर्थतंत्र मजबूत बनाबा अनु उत्पादक खर्च घटाकर पूंजीगत खर्च बढ़ावाक सुझाव दिलने। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के आयसिंह दरबार में बैसल बैठक में अर्थविद सब अनुत्पादक परियोजना सब खारिज कर आवश्यक खर्च कटौती करबाक चाही आ बजट विनियोजन करित काल कार्य संपादन में आधारित प्रणाली अपनायल जेबाक चाही बतौलन। आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट में समावेश कयल जाय वाला नीतिगत सुधार संबंधी विचार विमर्श में अर्थविद सबके मूल अभिवृद्धि कर भैट प्रणाली के प्रभावकारी बनाबल संरचनागत सुधार करबाक चाही आ बिचौलिया प्रवृत्ति तथा कालाबाजारी नियंत्रण करबाक लेल कर प्रणाली के पारदर्शी बनेबाक चाही सुझाव सेहो देलनि। अर्थविद सब सेवा क्षेत्र उत्पादन मूलक उद्योग दुनू क्षेत्र के संग संगे प्रवर्धन हेबाक चाही अर्थतंत्र के आर सुदृढ़ बनाबल नव प्रवर्तन मैत्री नीति के आवश्यकता रहल प्रति जोर दिलन। अर्थ समिति के बैठक में अर्थ मंत्रालय के सचिव डॉक्टर घनश्याम उपाध्याय विज्ञ सबके सुझाव के समेट कर संरचनात्मक आ नीतिगत सुधार संगे बजट प्रणाली के प्रभावकारिता बढ़ावा मंत्रालय प्रतिबद्ध रहल बतौलन। सांसद सब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी सबके समस्या समाधानक लेल सरकार के थाई समाधान तकबाक चाही पर जोर दिलने। राष्ट्रीय सभा, संघीयता सबलीकरण, राष्ट्रीय सरकार समिति आ सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति के आई बैसल संयुक्त बैठक में सांसद सब होल्डिंग सेंटर में देखल गेल पीबा वाला पानी, खाना, शौचालय लगायत के समस्या तत्काल समाधान करवाक लेल मांग कलन। बैसाख 29 गते दुनू समिति के संयुक्त रूप में नागार्जुन नगर पालिका में रहल इच गुनु नारायण के होल्डिंग सेंटर के अनुगमन कने आवता राखल गेल नागरिक के अवस्था विकराल रहल कहत स्वास्थ्य में स्वस्थ पीबा वाला पानी, खाय वाला खाना तथा रह के लेल सहज सुविधा करबाक चाही पर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद सब प्राकृतिक विपत्ति में सरकार अपन नागरिक के रक्षा करबाक चाही आ सरकारे नागरिक के विपत्ति में पहुँचने आरोप सेहो लगौलन। सरकार संचालन के राष्ट्रीय पोषण लेखा जोखा अभियान में कुपोषण होवला धियापुता के संख्या बढ़ल भेटल। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मंत्रालय धियापुता के पोषण के अवस्था पता लगाबत संचालन के अभियान में धियापुता के बीतल के से समय से अखन अधिक संख्या में कुपोषण देखल गेल। स्वास्थ्य सेवा विभाग पोषण शाखा प्रमुख लीला विक्रम थापा अभियान के प्रारंभिक प्रतिवेदन में बीतल समय से एहि बेर कुपोषण भेल बाल बालिका के संख्या अधिक रहल बतौलनि। हुनक हिसाबे कड़ा शीघ्र कुपोषण 4% बाल बालिका के देखल गेल। ऐसे पहिने इस संख्या 1% के रहल छल। मध्य प्रदेश सरकार के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो सप्तरी के राजबिराज स्थित उच्च अदालत जनकपुर राजबिराज इजलास सप्तरी जिला अदालत के बुध दिन स्थलगत अनुगमन कलने। अदालत के अनुगमन करत मंत्री महतो जेएनजी आंदोलन के क्रम में मध्य प्रदेश के अदालत सब में सबसे अधिक क्षति सप्तरी जिला अदालत में भेल भेटल। जनता के अंतिम विकल्प भरोसा के केंद्र न्यायालय भेल बावजूदो अ के जड़ा देव दुखद भेल ओ बतौलन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमत से पारित। संसद में प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की मांग करते हुए प्रतिनिधि सभा की बैठक में विपक्षी दलों का अवरोध। आर्थिक सुधार और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाने की पूर्व अर्थ मंत्रियों की सलाह। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आगामी शनिवार जाएंगे चीन की औपचारिक यात्रा पर। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को बहुमत से पारित कर दिया है। प्रतिनिधि सभा की आज हुई दूसरी बैठक में अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने वागले द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक को सदन से बहुमत से पारित किया। इसी तरह बैठक ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला की मंत्री शोभिता गौतम द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत तीन विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083, मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना एवं संचालन विधेयक 2081 को सदन ने बहुमत से पारित किया। विधेयकों की स्वीकृति के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विधेयक प्रस्तुत किए जाने, सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देने तथा संसद के प्रति जवाबदेह बनने की मांग करते हुए रोस्ट्रम के सामने खड़े होकर विरोध और नारेबाजी की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन को जानकारी दी कि स्वीकृति तीनों विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद संघीय संसद सचिवालय में संशोधन दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की पहली बैठक में विपक्षी दलों ने संसद में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अनुपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए अवरोध किया था। सभामुख अर्याल द्वारा प्रधानमंत्री की ओर से मंत्री शोभिता गौतम को विधेयकों को आगे बढ़ाने का समय दिए जाने के बाद विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर विरोध करने लगे। विपक्ष का अवरोध जारी रहने पर सभामुख ने प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। बैठक में सांसदों ने सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्रामा नीति की आवश्यकता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, भूकंप पीड़ितों के लिए आवास व्यवस्था तथा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान में कटौती जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने यह भी कहा कि मानसून शुरू होने वाला है और इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने का अनुमान है। धान रोपाई के समय पानी की कमी किसानों और देश के लिए बड़ा संकट बन सकती है, इसलिए कम पानी में होने वाली धान की खेती और बीज किसानों तक पहुंचाने की मांग की गई। सांसदों ने हुमला और बाजुरा में सीमा विवाद को लेकर हुई घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए

0: विषय पर सुझाव लेने के लिए 8 पूर्व वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सुशासन के आधार पर आम नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला बजट लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट निर्माण में पूर्व वित्त मंत्रियों के अनुभव और सकारात्मक अभ्यासों को अपनाते हुए नई परिस्थितियों के अनुसार बजट तैयार किया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री शंकर कोइराला ने पुराने आर्थिक प्रतिवेदनों का अध्ययन कर नीति निर्माण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिजली व्यापार में निजी क्षेत्र को खुला करने, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा हेजिंग नीति आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. युवराज खतिवड़ा ने अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य न रखने की सलाह देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि दर 10-12% के बीच सीमित रहनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. प्रकाश चंद्र लोहनी ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए छोटे मझौले और बड़े उद्योगों को समान रूप से प्रोत्साहित करने वाली नीति की आवश्यकता बताई। पूर्व वित्त मंत्री सुरेंद्र पांडे ने बड़ी परियोजनाओं की संख्या कम कर सीमित राष्ट्रीय गौरव परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. प्रकाश शरण महत ने सामाजिक सुरक्षा भत्ते को केवल लक्षित वर्ग तक सीमित रखने और सरकारी उद्योगों तथा संपत्तियों को लीज मॉडल में संचालित करने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री वर्षमान पुन ने कहा कि पिछले आधारभूत संरचना निर्माण का अपेक्षित परिणाम कमजोर रहा है, इसलिए पर्यटन आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने वास्तविक खर्च के आकलन के आधार पर बजट लाने की बात कही। पूर्व वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने बजट को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को लागू करने वाला दस्तावेज बताते हुए सरकारी खर्च में कटौती की आवश्यकता बताई। बैठक में शामिल अधिकांश पूर्व वित्त मंत्रियों ने आर्थिक सुधार को गति देने, निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ाने, खर्च नियंत्रण करने तथा उत्पादन मुखी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर समान राय व्यक्त की। नेपाल प्रहरी और संबंधित निकायों के सहयोग से शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने शैक्षिक परामर्श व्यवस्था में देखी गई विकृतियों और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए देश भर में शुद्धिकरण अभियान शुरू किया है। शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संबंधी निर्देशिका 2073 के अनुसार अनुमति न लेने वाले तथा विद्यार्थियों को झूठे दस्तावेज और आश्वासन देकर आर्थिक ठगी करने वाले संस्थाओं के खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई शुरू की गई है। शिक्षा और गृह मंत्रालय के निर्देशन एवं समन्वय में इसी जेठ 1 गते काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय ने उपत्यका के विभिन्न स्थानों पर संचालित 95 शैक्षिक परामर्श कंसल्टेंसी संस्थानों पर एक साथ छापा मारकर कार्रवाई शुरू की थी और अब इस अभियान को पूरे देश में चलाने की जानकारी दी गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। विभिन्न 8 विश्वविद्यालयों में रिक्त कुल 218 उपकुलपति पदों के लिए प्राप्त आवेदनों पर चयन तथा सिफारिश समिति ने अध्ययन शुरू कर दिया है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद के लिए 50 लोगों ने आवेदन दिया है, जबकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय और पोखरा विश्वविद्यालय के लिए 38-38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के लिए 19 लोगों ने आवेदन किया है। मंत्रालय के अनुसार मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के लिए 20, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए 11, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 15 तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए 27 लोगों ने आवेदन दिए हैं। समिति आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर स्वीकृति उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने जगदुल्लाह जल विद्युत परियोजना का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिए हैं। जगदुल्ला

0: जल विद्युत कंपनी लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रेष्ठ ने जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री श्रेष्ठ ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और देश के समग्र ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना निर्माण के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का समाधान मंत्रालय तत्काल करेगा। काठमांडू के टोखा नगरपालिका 7 स्थित धापासी ग्रीनलैंड आसपास के अतिक्रमित घर और टहरों को हटाया गया है। नगरपालिका के अतिक्रमित संरचनाएं हटाने में आनाकानी करने वालों के घर और टहरे डोजर की मदद से हटाए गए हैं। इससे पहले नगरपालिका ने 15 दिन की सूचना जारी कर सभी संबंधित लोगों से अतिक्रमित घर टहरे हटाने का अनुरोध किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो जियाकुन ने आज राजधानी बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के पीएम ली कियांग के न्योते पर चीन जा रहे हैं। प्रवक्ता क्वो ने कहा कि शरीफ की यह यात्रा दोनों देशों के बीच होने वाली एक अहम बैठक होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करीबी संवाद और समन्वय बनाए हुए हैं, अपने साझा हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस यात्रा को पारस्परिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हर क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने और नए दौर में साझा भविष्य वाले और अधिक करीबी चीन पाकिस्तान समुदाय के निर्माण में नया अध्याय लिखने के अवसर के रूप में लेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पाकिस्तानी के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ पर बधाई दी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन का दौरा कर चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमत से पारित। संसद में प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की मांग करते हुए प्रतिनिधि सभा की बैठक में विपक्षी दलों का अवरोध। आर्थिक सुधार और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाने के पूर्व अर्थ मंत्रियों की सलाह। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आगामी शनिवार जाएंगे चीन की औपचारिक यात्रा पर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
4: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
5: नागरिक लगानी कोष।
6: झण्डु आयुर्वेद।
7: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
6: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, यूरिक एसिड, गैस्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
7: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
6: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
7: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
8: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ।
4: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
5: नागरिक लगानी कोष।

0: परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके पर्व बोलते हैं। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके पर्व बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, पर उनके हुनर बोलते हैं।
1: क्या बात है।
0: इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी से बाहर गीतों के कार्यक्रम मधुरमा में। और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव।
0: और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी।
1: जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ एफएम बैंड 98.100 और 103 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np, www.onlineradionepal.gov.np और www.psvnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं।
0: और इसके अलावा बहुत से मित्र हमें मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं, तो जो नहीं देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात लाइव कमेंट के जरिए साझा भी कर पाएं।
1: जी,
0: और अगर किसी कारणवश लाइव न भी देख पाएं तो बाद में भी इसे आप मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज पर देख सकेंगे। तो इसके लिए जल्द से जल्द आप अपना मोबाइल उठाएं, मधुरिमा हिंदी फेसबुक पर जाएं, लाइक और फॉलो ज़रूर करें।
1: जी,
0: और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी नए लोग हमारे साथ जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। जी
1: जी हाँ दोस्तों, हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज है बारी आपके द्वारा किए जाने वाले फोन कॉल्स की, मिठास भरे प्यारे फोन कॉल्स, जिसके लिए आपको डायल करना होगा 01421 और 01437।
0: और अगर आप नेपाल से बाहर के श्रोता है तो आपको डायल करना होगा +9771 4211 721 और 4211 736। एक बार फिर से सुन लें, +9771 4211 721 और 4211 736।
1: और यहाँ पर फेसबुक के जरिए बहुत से मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधुरिमा हिंदी के साथ, रेडियो नेपाल के साथ,
0: तो उनके कमेंट्स का जवाब हम गीतों के दरमियान जरूर देंगे।
1: जी,
0: फिलहाल हम गाने की ओर चलना चाहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और डॉक्टर राय जी हैं नवलपुरासी से, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी, तो पहले पूरी करते हैं आज उन्हीं की फरमाइश, सुनते हैं ये गीत।

0: सन् 1985 बनी टार्जन फिल्म से गाना आपने सुना उत्तरा केलकर की आवाज में। इसके गीतकार हैं अंजान और संगीतकार बप्पी लहरी। और कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुबन में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: जो भरा नहीं है भाव से उसमें बहती अंजान लूं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
0: क्या बात है,
1: भैया दीदी को गुटबानिया का प्यार
0: नहीं। गुड्डू जी हैं, कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं भैया जी, और भी कुशल मंगली
0: जी। हम भी कुशल मंगली हैं इधर भी। और आपने तो बड़े शायरी से शुरुआत की बातचीत की, लेकिन शायरी हमें ठीक से सुनाई नहीं थी क्योंकि नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब था। तो और कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में
1: भैया जी? एक शायरी और पेश करूंगा
0: जी। इरशाद सुनाएं।
1: तस्वीर तुम्हारी देखकर हम वक्त गुजारा करते हैं, और जब भी पन्ना बैठे
0: आपके।
2: और कोई गाने की फरमाइश करना चाहते हैं गुड्डू जी?
0: जरूर जरूर रहेगा, और इस गाने को हम जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जी, 100 साल पहले। चलिए, ये थे गुड्डू बानिया जी। और देखिए, ये हैं मेरे ख्याल से सीनियर ही होंगे हमसे
2: जी,
0: और इनका नाम भी एक तो गुड्डू है।
2: हाँ।
0: और ये बात भी बच्चों की तरह मासूमियत के साथ करते हैं, तो बहुत मजा आता है हमें इनके साथ बातचीत करके। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे सांगीतिक यात्रा की ओर। और इस गाने की फरमाइश ओम बहादुर जी ने चूला चूली इलाम से की थी। इस गाने की फरमाइश, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चुला चुली इलाम से ओम बहादुर बिष्टजी की फरमाइश पर यह गाना आपने सुना। फिल्म जीत से जो किसान 1996 में रिलीज हुई थी, विनोद राठौर और अलका याज्ञिक की आवाजों में। इसके गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।
1: और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो नमस्ते।
2: जी नमस्कार।
0: कैसे हैं, कहाँ से हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: हम दीपेंद्र यादव, बीरती परस्तोकार रोहतहट मध्य रेडियो श्रोता संघ से।
0: बीरती परस्तोकार रोहतहट से, कैसे हैं?
2: बिल्कुल अच्छे हैं, ईश्वर का कृपा है, अच्छे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप लोग को याद किए हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें याद करने के लिए।
1: गांव का नाम ले, हमें लगता है कि हमने कोई जंग जीत ली है।
0: नहीं, अब तो हम एकदम धड़ल्ले से बोल लेते हैं स्पष्टता के साथ।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता है बोलने में, बहुत अच्छा लगता है।
2: बहुत अच्छा गांव का नाम है हमारा, बिरती परस्तों का।
0: बहुत खूबसूरत नाम है। जी बिल्कुल। दीपेंद्र जी कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
2: जी अगली बार, अगले हफ्ते में पेश करेंगे।
0: जी इरशाद सुनाए।
2: अगले हफ्ते में सुना देंगे।
0: अगले हफ्ते में सुनाएंगे, मुझे लगा
1: अगले हफ्ते सुनाएंगे। अच्छा, कोई गाने की फरमाइश ही कर लीजिए।
2: जी फिल्म है, गाने को बोले दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
0: दिन ब दिन मोहब्बत
2: बढ़ती जाएगी,
0: बढ़ती जाएगी। किस फिल्म का गाना है ये?
2: अक्षय कुमार का फिल्म है अभी।
0: और इतने प्यार से बात करने के लिए
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। और ये थे दीपेंद्र जी, बिरती परस्तोका से।
1: हाँ, और एक और है वहाँ पर सुनसरी, कहाँ पर बिरती परस्तोका?
0: बिल्कुल हाँ, उधर
1: टोकी क्या है?
0: बिरती परस्तोका ही है, टोकी है वो। अच्छा चलिए, वो जब भी फोन करेंगे हम कंफर्म करेंगे उनसे जरूर।
1: टोका टोकी।
0: पर बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ। अब हम गाने की ओर चलना चाहेंगे और इस गाने की फरमाइश राम पुकार राय जी ने की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि यही गाना सुनना है, उन्होंने कहा था कि भक्ति संगीत कोई सुना दे, और उनके लिए रमिता जी ने इस गाने का सिलेक्शन किया है।
1: हाँ।
0: ये श्रेय मैं इन्हीं को दूंगा। तो राम पुकार राम जी, राय जी भी बताए कैसा लगा उनको, और बाकी श्रोता भी प्रतिक्रिया दें फेसबुक के जरिए भी। तो सुनते हैं ये भजन।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म घराना से, जो कि सन 1961 में रिलीज हुई थी, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इसके गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार रवि।
1: और इसी बीच कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत। हम वीरेंद्र प्रसाद सिंह बरदंगा मोरंग से बोल रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल धरान में रहते हैं।
1: मुझे लग ही रहा था वीरेंद्र जी हैं।
0: वीरेंद्र प्रसाद सिंह
2: गर्ल्स हॉस्टल से बोल रहे हैं।
0: गर्ल्स हॉस्टल से, ये और भी अच्छी बात है। कैसे हैं वीरेंद्र जी?
2: बहुत बढ़िया, अभी काम से आए, प्रोग्राम सुन रहे थे तो फोन लगाते लगाते लग गया।
0: चलिए, ऐसे आप लोगों का लगता है ना फोन, तो हमारा भी लगता है मन
1: जी।
2: और बात तो ठीक है, अभी जैसे 4211736 जो है ना, दो नंबर लगाते लगाते एक नंबर लगा, वो 36 वाला।
0: हाँ। चलिए,
1: यहाँ पर सभी लोग ट्राई करते रहते हैं, इसलिए बहुत समय लगता है फोन लगने में यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय पर डायल कर रहे होते हैं। इसलिए
2: आप कौन बोल रहे? सीमा शर्मा की वो रमिता मैम?
0: रमिता जी बोल रही हैं।
1: आप भी पहचान लीजिए, आप वॉइस से नहीं पहचानते, आवाज से नहीं पहचानते, आवाज ही पहचान है मेरी।
2: नहीं, हम अगला प्रोग्राम जो सुनते थे आप नहीं थे कि हम वो भाई जी से पूछे थे कि कहा क्या, बोले वो दोनों छुट्टी में, इसीलिए।
0: जी बिल्कुल, हाँ, इनको छुट्टियां भी कभी मिलनी चाहिए ना, इसलिए।
2: हाँ, मिलना चाहिए, गर्मी बहुत है इधर उधर।
0: जी बिल्कुल जी, कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
2: गाना एक पुराना फिल्म का, फूल और कांटे का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा?
2: जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की मोहर नहीं, मेरी कॉलेज की एक लड़की है।
0: क्या बात है, छा गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। अब हम फिर से गाने की ओर चलना चाहेंगे, और ये जो गाना है इसकी फरमाइश देखिए, इनकी उम्र कितनी लंबी है। वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं बरदंगा मोरंग से, जो अभी आए थे, इन्हीं की फरमाइश है पुरानी, तो सुनते हैं ये गीत।

0: सन् 1985 में बने फिल्म प्यार झुकता नहीं से गीत आपने सुना शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इसके गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अफरोज अहमद जी हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे का
1: मुरलीगंज बिहार भारत से और
0: उन्होंने कहा कि उनके बेटे का बर्थडे है 27 मई को और बर्थडे पर कोई गीत सुना दें और उन्होंने एक ये भी ख्वाहिश रखी थी मुकेश जी आप गुनगुना दें तो हमारे प्रावधिक में तैयारी कर रहे हैं आपके बर्थडे सॉन्ग सुनाने के लिए। हालांकि वो तैयार है, इशारा करने के वो सुना सकते हैं, लेकिन आप तब तक मुझे भी झेल सकते हैं थोड़ी देर जी। और रफी साहब का गाना मुझे गुनगुनाने का आज मूड है।

0: तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। थैंक यू।
1: क्या बात।
0: और ये उनके आग्रह से ज्यादा मुझे गाने का मन था। जी, और अब हम एक बार फिर से रेडियो नेपाल की ओर से और मधुरिमा कार्यक्रम की ओर से आपके बेटे के जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं और सब कुछ सब तरह से कल्याण हो आपके बच्चे का, और ये गीत आप सबके लिए।

0: और एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हमदान आपको जन्मदिन पर, और अफरोज ने इस गाने की फरमाइश की थी। और हम फिर से एक गाने की ओर चलना चाहेंगे, लेकिन प्रावधिक मित्र इशारा कर रहे कि नहीं जा सकते क्योंकि कोई फोन पर
1: हमारे साथ, सांस भी अटक गया कहते कहते
0: कुछ होता हमारे साथ जुट गया। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुजन में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
2: हेलो
0: हेलो जी, हम सुन रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? स्वागत है।
2: मैं सुन सर दोस्तों से
0: आपने नाम नहीं बताया।
2: मेरा नाम वैद्यनाथ चौधरी।
0: वैद्यनाथ जी बिल्कुल, हम हमें याद था जी। कैसे है वैद्यनाथ जी?
2: एकदम बिल्कुल सही है सर।
1: और आपकी हंसी ना बहुत ही खूबसूरत है, क्या
0: बहुत प्यारी है जी।
2: इतना खास
1: में मुझे अच्छा लगा,
2: माया पाने से खुशी लगता है।
0: हाँ शुक्रिया। नहीं ये तो दूसरों को पता चलता है ना जी। वैसे क्या पेश कर रहे हैं आप कार्यक्रम में?
2: अब मैं क्या करूँ, वही गीत थोड़ा सा गुनगुना देंगे
0: जी। इरशाद गुनगुनाए।
2: हाँ ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: बहुत बढ़िया वैद्यनाथ जी।
2: उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले उड़ले।
0: वाह छा गया वैद्यनाथ जी, छा गया, बहुत बढ़िया
1: बढ़िया।
0: और कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे इसी गाने को?
2: एक गीत हमको जो हमारे मित्र जो प्रस्तोता से
0: दीपेंद्र जी
2: थे ना, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, वीरेंद्र था या रविंद्र?
0: वीरेंद्र, वीरेंद्र जी,
2: वीरेंद्र जी। उसके लिए मैं एक गीत फरमाइशी करना चाहूंगा, जो तो मेरा मित्र है प्रस्तोता से। तो मैं गीत में फरमाइश करना चाहूंगा। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना।
0: जी ये इस ये गाना आज ही फरमाइश की जा चुकी है, आपको दूसरा सोचे, आज बजेगा ये गाना।
2: ये बस बजेंगे आज,
0: बिल्कुल बिल्कुल आज ही बजेगा। तो चलिए
2: आज बात अच्छा तो एक गीत हमको सुना दीजिए। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरी सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर, मोहब्बत की एक आसियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो हम चांदनी सी राहें सजाते।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वीरेंद्र जी।
2: वो मेरे मित्र जो थे प्रश्नों का कल के लिए
1: नाम है दीपेंद्र
0: जी, जरूर सुनवाएंगे इस गाने को। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए।
2: धन्यवाद रमिता मैम और मुकेश सर,
0: धन्यवाद जी,
1: शुक्रिया आपको भी।
0: और अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन एक गाना हम सुनेंगे जरूर, और इस गाने की फरमाइश बाफल से हिना झा जी ने की थी काठमांडू से। अब हम सुनेंगे एक दूजे के लिए फिल्म से एक गीत, एस पी बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में। इसका गीत का है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा होने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। हमारा ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्रावधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र
1: और मैं रमिता यादव
0: आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल।
1: नमस्कार, शुभ रात्रि।